0: हेलो जिमी, राहुल आ गया अपने एंट्री पॉइंट पर।
1: नहीं राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे बॉबी भी राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
0: श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।

0: 15 hours, 23. Just got a couple of minutes more to go to wrap up time. That's cricket going on. The CPL, the Republic Bank CPL games, St. Kitts and Nevis Patriots versus the Guyana Amazon Warriors. The current score after 4.3 overs, 4 overs and 3 balls, 39-1. That's the St. Kitts and Nevis Patriots. And of course, they're making runs so that the Amazon Warriors could bat. Match is going on right now.
1: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती हैं। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।